हम भक्पुत्री रहरचो सावन रो दूलो एंग लातिपात कुस्कांग वर्नो ब्यांकांग dati pangulumiwah bupati kang sakma